0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। नेपाल और चीन की सरहद पर शदीद सैलाब आने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस इलाके में काम करने वाली बैन अल्कवामी गैर सरकारी तंजीमों या एनजीओस के नुमाइंदों ने मुतासरा आबादियों के लिए तवील मुद्दती मदद का मुतालबा किया है। नुकसानात की वसत का जायजा लेने और मकामी जरूरियात के सर्वे में मसरूफ अमल एक जापानी ग्रुप ने पीर के रोज ऑनलाइन ब्रीफिंग मुनाकिद की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हीरो आकी ने दिखाया कि आफत में पुल बह जाने के बाद किस तरह रस्सी और दीगर जराए से इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज यह है कि सड़कें कट चुकी हैं जिससे इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए सड़कों तक रसाई की बहाली बुनियादी शर्त बन चुकी है। एक और जापानी एनजीओ के एहलकार ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में ऐसे लोगों से अपनी बातचीत बयान की जिन्होंने अपने अहले खाना को खो दिया है। शांति रजाकार एसोसिएशन की मोहतरमा हागीहारा हिरोको ने कहा, जब तक लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इस लिहाज से जरिया माश की बहाली जरूरी होगी। जापानी हुकूमत ने पहली बार बैरून मुल्क मुकीम जिनमें जापानी शहरी भी शामिल हैं की मलकियत में मौजूद जमीनों और इमारतों के आदादोशुमार जारी किए हैं। मंगल को जारी किए गए सर्वे के नतायज जाहिर करते हैं कि मुल्क में रजिस्टर्ड अराजी का तकरीबन 0.06% बैरून मुल्क मुकीम अफराद और कारपोरेशनों की मलकियत है। 27.2% के साथ जमीन की मलकियत में सबसे ज्यादा हिस्सा अमरीका का है। इसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% है। सर्वे यह भी जाहिर करता है कि जापान में रजिस्टर्ड इमारतों में से तकरीबन 0.2% बैरून मुल्क मुकीम रहायशियों और कंपनियों की मलकियत है। चीन इमारतों की मलकियत में 44.2% के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद 18.6% के साथ ताइवान और 11.3% के साथ अमरीका का नंबर आता है। जापानी हुकूमत ने ऐसी जमीन और इमारत मालिकान की शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मालूमात को भी देखा जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गैर मुल्की शहरी और कंपनियां हैं। नतायज से पता चलता है कि रजिस्टर्ड अराजी का 0.46% और रजिस्टर्ड इमारतों का 1.07% उनकी मलकियत है। हुकूमत इन नतायज को गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसियां बनाने के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की एयर सेल डिफेंस फोर्स ASDF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हॉक मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया है क्योंकि तोतोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा इसी तैयारे का हो। और जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकायची सनाए ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।